0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क्या है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां, प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गद के आ

0: चेला होगा कोई वो अपने गुरु नु समझाया करेगा जा के नहीं गुरुदेव ए गल इस तरह तुसी हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन्हां गल्लां दा पता भाव हुण भी तां समझाउंदे ने आके हुण भी तां कह रहे गुरु ग्रंथ साहिब जा पिछौर सिंह ते प्यारा सिंह अर्गे उठ खड़े होए सी ते आ हुण होर ही खड़े दसम ग्रंथ दे विरुद्ध होर गल्लां कर रहे ने इही जिहड़ा गल है ये कहने इन्हों नहीं पता है असल तो सानू पता साडियां बुद्धियां ज्यादा कम कर दियां ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलता है कई तो इउं कहंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलदी यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खावे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहन तजे काया दुखी जे नहाउणा छड़ देणगे क्यों नहाउंदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जिहा की नहा के लैणा है ते जे उहनू कहो आ रोटी खा लो आ होर चीजा खा लो कहिंदे किथे रोटी महाराज कहिंदे रोटियां खाण नू तकड़े होणगे कलयुग च ओ चीजा खाई जाणगे सारियां जे कह दो इशनान कर लो फिर उत्थे डिग पिया करनगे मेरा तो शरीर नहीं ठीक है
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज
0: कहिंदे प्रीति तो होवेगी नहीं लोकां दे विच होर की करनगे कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे इहदे कोल सानू खाण नू मिलदा है जिथों खाण नू मिलेगा उत्थे पैरी हाथ तक लाया करनगे गोडी हाथ लाउणगे यह बंदा बड़ा वधिया जिथों खाण नू ना मिलिया करेगा उहनू गालां कढ़िया करनगे
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोकां दे मनां अंदर कलयुग दे विच कि विशियां दी गल जे तां विशियां दी गल करो फिर तां जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले गाने गाउण वालियां इस्त्रियां उत्थे दा बेअंत इकट्ठ हुंदा जिथे कोई भजन पाठ की गल होगी उथों लोग भजया करे एक होर कहते ने जिमें सारा दिन बंदा बस विषयों ही चित भी जाया करे कलयुग के कदों रात पवे कदों विषयों परिवर्तित होइए कहने जेड़े लोग कवि लोग होणगे उन्होंने जी चंकी कविता होगी कलयुग के लोग चंकी कविता सुनिया नहीं करे कहे एवं फालतू गल कर दे कवि किसी इसत्री की कविता सुना दे विषया बकारा की भाव माड़े गाने जिमें अजकल चलते ने फलाना गा रहा उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने ते जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है जिथे कोई ढाडी सिंह आउंदे ने इह कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू इह झूठियां गल्लां करदे आ इह उहनां नूं नहीं सुणनगे लोग कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने तां फलाना गा रहा फलाने तां फलाना गा रहा इहनूं दो वी 50 लख रुपया करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा करोड़ रुपया लैंदे लोग जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा कोई कथा वाला कोई कीर्तन वाला भाई जी 151 बढ़िया उहनूं 151 251 उत्थे नाल एक रुपया जरूर वो जे थोड़े गाउण वाले उहनूं क्यों नहीं कहिंदे 5 लख एक रुपया लैणा उहनूं नहीं कहिंदे एक रुपये नाल क्योंकि उहदा निरादर हुंदा इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उहनां नूं लोग सत्कार दिया करनगे कहिंदा मेरे समें च जिहड़े लोग चंगे होणगे उहनां नूं लोग निंदिया करनगे इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समें च की वर्तारा वरतेगा आओ रसना नूं करिए पवित्र।

0: दोहेरा सबा सर्ब कवियन बिकै इस बिद भयो संवाद।
1: पिछे भी जो बीते हुए प्रसंग सारे लंघ चुके ने उन्हां विच कवियां दे नाल गुरां ने संवाद किया, बचन बिलास होए। इस तरह सारे बचन बिलास अगे भी हो रहे हैं।
0: तन तन सब ही कहे हृदय अधिक अहलाद।
1: सारे जाने कहने तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज, तन हो सच्चे पातशाह। सारे दे मना दे अंदर बड़ा ही आनंद आया इन्हां बचना नूं सुन के कि कलयुग दे विच किन्ना महात्म है नाम दा।
0: जो पई उठे प्रभु मंदर को गए।
1: महाराज फिर उठे, संगत विचों उठ के अपने महलां वल गए।
0: नाना रस आहार अच लई,
1: नाना प्रकार दे भोजन छाके।
0: उन प्रियंक पर करियो आराम।
1: फिर सुंदर सोहने पलंग दे उत्ते विश्राम कीता।
0: इम संवाद कवियन अब्रह्म।
1: इस तरह बड़ा सुंदर संवाद कवियां दा होया है।
0: देश विदेशन मैं कवि गुनी आवे चले सो कीरत सुनी।
1: देशां विदेशां दे विच गुनी कवि जड़े ने जिन्हां विच गुण बहुत है पर कदर नहीं है किते। जदों पता लगता है कि कलगीधर महाराज कवियां दी बहुत कदर करदे ने तां ओह सारे एकत्र हो के महाराज जी दे पास आउंदे हन।
0: दर्ब करोड़ों लग बख्शंते।
1: करोड़ां रुपईयां तक, थोड़े बहुत रुपईये नहीं दिंदे कवियां नूं, 50,000 तो घट तां दित्ता ही नहीं किसे नूं, लख 2 लख बहुत कुछ दिंदे ने। क्यों? ये भी थोड़ा करोड़ भी उन्हां वास्ते, क्योंकि तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। चाहुण तां धरती सारी दा राज दे देण, सो चाहुण तां स्वर्गां दा राज दे देण, महाराज लई कोई वड्डी गल नहीं है।
0: युग लोगन के सुखन लभंते।
1: जिहड़े जीव चाहुंदे ने, कवि लोक भी चाहुंदे ने, सानू दोनों लोकां दा सुख मिले।
0: अमृत राए कवि इक आयो।
1: हुण ये चाहुंदे जो भी ने मिलदा है इत्थे। इन्हां विच हुण पहला कवि है अमृत राए, ये सतगुरु महाराज दे पास आया।
0: कर कीरत को कवित अलायो।
1: इसने आके जदों महाराज दे दर नूं तक्किया, दरबार देखिया, सारी संगत दर्शन कीते, गुरां दी महिमा जानी, तां इह कवि ने इक कविता रची है।
0: मिलियो प्रथम कीन परणाम।
1: पहला आके महाराज दसवें पातशाह नूं मत्था टेकिया है।
0: बौर सुनाए सुजासे अब्रह्म।
1: फिर बड़ा अब्रह्म हुंदा सुंदर, सोहना जस कीता है।
0: कबित जाही ओर जाऊं अत आदर तां ते पाऊं।
1: हुण कबित कवि जी ने रचिया अमृत राय ने, 52 कवियां विचों जिथे भी जांदा हां हे सच्चे पातशाह,

0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तां हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कह के संदेश जो।
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरती है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरती तां बहुत असी किवें कह सकदे आ? तुहाडा तां जस पहलां ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरती लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है संदेशा लै के मेरा, तो इहनू तुसी माण आदर बख्शना।
1: जो भई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राख्यो निट मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा।
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: इन सुन सुन कर सुजस बडेरा।
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन केने छंद बंद सुंदर गत लेने।
0: ए करण परब एदी पाखा जिहड़ी है भाव देश भाषा विच बोली विच ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: दिन गुर के सभा में श्री अर्जुन की रहत।
1: एक दिन का भजन है कि महाराज दसवें पातशाह ने भरी संगत दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने जो रहत मर्यादा भाव जो श्री सुखमनी साहब दे विच मर्यादावां दा वर्णन किया है ओ सारियां संगतां नूं सुनाया है।
0: कल महिमा सुखमनी बहु जप जी महिमा महत।
1: कलयुग दे समें दे विच श्री सुखमनी साहब दी महिमा बहुत ज्यादा है अते दे नाल नाल जप जी महिमा महत जप जी साहब दी महिमा जड़ी है ये भी बहुत ज्यादा है।
0: जिनके सेवन ते मिटे बिघन तलक संदाए।
1: जिन्हां दे पढ़न नाल बाणी पढ़दिया फिर सुननी कमाउनी बाणी पढ़दिया बहुत सारी मन दी जिहड़ी कालख है अथवा कलख जिहड़े पाप ने साडे कीते होए कई प्रकार दे बिघन ने ये सारे ही

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान

0: सच्चे पातशाह कहें चंगा उन्होंने जाके दस दी चाचरी संतवा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियन करियन नामिया कामे कहते मुकाबले गैतरी कुछ भी नहीं है मुकाबला ही नहीं कर सकता गुरु घर के जिन्ने भी बाणी है कहते यह तो जदों फिर चर्चा होंगी सी ना उन्होंने जमानिया के तीजे पातशाह वे कि किंतु किया पंडतों ने जाके केस करता अदालत दे विच इन्होंने वेदा के होंदया नवी बाणी रची है इन्होंने जी साढ़े ठाठ तीर्थ सी फिर बौली साहब क्यों रची है या उदो जवाब देने पैंदे सी उदो सतगुरु महाराज ने कई प्रकार दी चीजा दसिया सिंघां नूं और सिखां नूं दसिया गुरु नानक देव महाराज वेले भी यह चर्चा हुंदी रही है तां दे आपां भी इत्थे उह पुरानी चीजा सुन लैंदे हां
1: तेरे दिन खुट मैं चौवी चातर प्रेत
0: हुण कहिंदे अखुट होवे अन्न साडे कोल मुक्के ना भंडारे भरे रहन तो कहते तेईवी पौड़ी फिर ये वास्ते असी बख्शिश की तेईवी पौड़ी का पाठ करो जो एक ही काम विच लोड़ है अखुट रिद्धियां सिद्धियां की प्राप्ति इसे प्रकार अथवा रिपन जे आज पाठ रिद्धियां की जगह से वैरिया ने निखुटन लई तो सियाणियां दे नाल कोई गलबात करना होवे किते किसे बंदे ने जाना होवे चर्चा दे विच कहते चौवीवी पौड़ी का पहला जाप करो अथवा चौपी साहब का जाप करो सो जिवें किसे पंडित ने कहा सी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा नूं जदों कहिंदे असीं पिंडी हुंदे सी कहिंदा उह ब्राह्मण कहिंदा मैं चर्चा करनी है गुरबाणी ते तुहाडे नाल उह कहिंदे मैं आखिया वी मैं हुण की करां कहिंदे मैं चौपी साहब दे सवेरे उठ के पहलां पंज बाणियां पढ़ियां फिर पच्ची पाठ चौपी साहब दे करके दसवें पातशाह अगे अरदास कीती कि महाराज मैं चर्चा करन चलिया गुरु घर की लाज रखियो पंथ की लाज रखियो पंडित ने चर्चा करनी है कहिंदे फिर वाहिगुरु दे जी कृपा रही कहते पिंड बड़े लोग कट्ठे हुए सी कहते फिर साड़ी इन्नी चर्चा हुई कहने मैं उतो जित के आया क्यों पाठ किया जे आप पाठ करिए कहने महाराज इतने कहते चौवी चात्र प्रीत जे बहुता ज्यादा करना हो किसी नाल चर्चा आदिक कहते दिमाग नूं वधाउणा होवे तां चौवीवीं पौड़ी पढ़ लो
1: पंचवीसवीं आदरे सबको मोहन रेत
0: कहते भी ते पंज पच्चीवीं पौड़ी जिहड़ी असीं बख्शिश कीती है अपने आदर लई ते सारे जेते मोहित हो जान जी जंत सब भय दयाला ये गुरबाणी अंदर कई चीजा आने जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अथवा बादशाह साहब सब वस कर दीने ये मतलब गुरु घर के चीजा है नहीं गिया सारा कुछ बाणी अंदर हैगा पर अपने कोल तो फिर उन्नी की सोझी जिनी की आपां नूं होनी है जे असीं ये चीज छड़ जाई ना दसणों तो अगला यह समझदा कई बार बाहरले लोग भी यह कहने इन्हों को फलानी चीज नहीं गुरु घर साडे कोल सारा कुछ ही है असी वरतीए ना वरतीए पर अपने कोई कमी नहीं इन्ने खजाने भरपूर पए ने महाराज कहने जे मोहित की क्रिया भी करनी हो भी इस पौड़ी का पाठ करे पच्चीवी
1: छब्बी छल मैं बल धरे सप्तविश का जाप
0: कहने फिर इस करके दूसरिया के छल तो बचण लई छब्बीवीं का पाठ सताईवी का जाप जरा बल धारण वास्ते करे
1: अठवी सकै भै दूर को होए बजर सम पाप
0: भै दूर करने वास्ते बजर पाप हो जान जेड़े बंदे तो अठाविंस पाप अठाईवी पौड़ी जेड़ी है इथे सताईवी मंगनी है क्योंकि उन्होंने पहला एक पौड़ी उपरों लै ली दूसरी इस करके सताईवी पौड़ी सो दर तेरा कहा सो करके हा ये बजर पापा नूं दूर करन वास्ते डर नूं दूर करन वास्ते कहने पढ़ी जावे
1: विख पीवै बिखिया कटे उन्ती से का झाड़
0: कोई बंदा सप लड़ जांदा जां जहर पी लवे इत्यादिक जहर दी किरिया नूं कट्टण वास्ते भी कहंदे असीं बख्शिश कीती होई है ते जेड़ी पौड़ी 29वीं है इहदा जाप करे
1: दूध वधावै वजन मैं तीस पौड़ियां गाड़
0: कहने हुण जिहड़ा अजकल लोग दुध वधाउंदे आ होर इस तरह मिलावट करदे आ कई कर्म करदे ने बाणी नाल भी दुध वधदा बाणी नाल भी रिद्धियां सिद्धियां वधदियां ने महाराज कहिंदे 30वीं पौड़ी का जाप करे घर विच दुध की कमी नहीं रहिंदी ओही भाव के सारा जपजी साहब दे पाठ करे ते सारियां मुरादां पूरियां गऊ भैंस मंगों ला वेरी भगत धन्ना जी परमात्मा नूं कहिंदे एक गऊ दे दो एक लवेरी मझ ए ना होवे को दुध ही ना दिंदे मैं की करनी है इस करके नाल लावेरी लिख दिता लावेरी हुंदी है सोई हुई गऊ ते सोई हुई मझ ता महाराज कहने जे दुध दी लोड़ है दुध वधाउणा है गऊ मझ दुध नहीं दिंदी है ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ

0: एक बार सतगुर कहो मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के विच एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत जो

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे, पर मेरा सिख इस पासे दी चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। ये बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर ये दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम दी बाणी है। ताइयो महाराज ने दसम ग्रंथ दी बाणी जिन्ने भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने ये चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतू करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जाणी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा है उदों दसम दी बाणी पढ़दे हां, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे हां। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

0: क्यों पए एक दिन पिक सतगुर की मर्जे संगत हाथ जोड़ की अर्जे।
1: एक दिन सतगुरु महाराज जी की मर्जी जदों बहुत प्रसन्न बैठे होण ते भाई सिंघो कुछ पुछना पुछ लो, इस तरह गुरां दे इशारे विच समझ गए कि सतगुरु कुछ दसना चाहते हैं। जो किसी का प्रश्न है, सारी संगत ने हाथ जोड़ के इस तरह गुरां दे अगे बेनती की है।
0: साचे पातशाह कहिए चतर वरण मुंडत ही लईए।
1: महाराज जी ये कृपा करके सानू दसो, ये जे चारे वर्ण ने सारे खत्री ब्राह्मण सूद वै साधक और भी बड़े बड़े लोग ने, ये सारे जने मुन ही ने, मुंडत भाव हरेक नहीं केस दाढ़ी कट के बिल्कुल ही सफाया किया होया है।
0: पूरब तीन जुगन की बात सुनी पुरानन में बख्यात।
1: पहला जी तीन जुगन की गल है बख्यात प्रगट ही सुनी है उसी भाई, इन्हों में लोग अपने केस नहीं सन कटाउंदे।
0: सबके सिर पर उते सुकेश शमस मूछ तो धरत विशेष।
1: सारे जने अपने केस रखते दाड़ा रखते सन, हरेक जना अपने केसां दी

0: जी, बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी आ

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रवदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुखो गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी बख्शिश दा सदका आप जी सरबत माई पाई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे दर्शन करने लई आप अपने घरां तों आए हो, वडभागे हो। सतगुरु ने एक था बाणी दे विच ऐसा दर्ज किया है, बाह पकड़ जिस मार्ग पावो, ओ जीव सतगुरु गरीब नवाज तेरी पावन चरण शरण विच पनाह विच आउंदा है। जिन्हों तो जीवन दे निर्वाह विचों गुजरदिया होया बाहो फड़ के आखे चल गुरुद्वारे चलीए, एवें नहीं। सतगुरु की पावन गुरबाणी विच ए दर्ज आ कि जिहदी बाह फड़ के सतगुरु गुरुद्वारे लियावे ओ गुरुद्वारे आउंदा है। अज की इस घड़ी दे विच आप जी अपने आप नूं वडभागे जाणो कि तुहाडे पावन शरीर नूं धन गुरु नानक पातशाह दे दीन दुनिया दे मुबारक हाथ लगे, तुहानूं बाह फड़ के सतगुरु ने अपनी शरण विच लियांदा है। इथों हुण जिहड़ियां घड़ियां सतगुरु की शरण विच आप जी ने गुजारनियां ने, सतगुरु कृपा करे ए 20 मिंट का समा साडे जीवन दे विच ओ गल समझा जावे जिहड़ी अज दे पावन उपदेश विच गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक इस महीने राही आपां नूं कहणी चाहुंदे ने, उपदेश देना चाहुंदे ने। हे जीव आत्मा, अषाढ़ दे महीने विच तू की कमाई करनी, अषाढ़ दा महीना किन्ना नूं तपश वाला लगदा है, ते किहड़ियां जीव आत्मा नूं अषाढ़ दा महीना सोहणा लगदा है, ए पावन उपदेश सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने अज दे महीने विच बख्शिश कीता है। एक बार सारे मेरे भैण भरा अपने विछड़े होने दे अहसास विच आण के जो मेरे साहब ने मंगला चरण दे विच बेनती कीती है, 12वां माझ महला 5वां विच सतगुरु गरीब नवाज दे ओ पावन बचन तुसी ते मैं सारे एक बार रल के गाईए। बहुता समा अज नहीं आप जी की सेवा कर सकनी, सतगुरु कृपा करे कल तो पूरा समा जिन्ना बख्शिश होगा आप जी दे जोड़े झाड़िया करूंगा। एक बार रंग विच आण के

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मेनू विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया, जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

अपने अंदर झाती मारो, धन गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी अनुसार जीवन ढालो, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो। ये हर हर कथा निराली कथा है, प्यारी कथा है, जिधर गुरु तोरदा है उधर चलो, सो सिख सका बंधप है भाई। जे गुर के भाणे विच आवे, हुक्म विच आवे गुरु दे, ते अपन भाणे जो चले भाई, ओ विछड़ चोटा खाए, विछड़ के चोटा। आ सारा संसार अज क्यों दुखी, सारे संसार दे दुखां दा कारण कही है इना पंजवे बापू दा वचन नहीं मनिया, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। इना पंजवे बापू दा वचन नहीं सुनिया, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म वजोग। इना पंजवे बापू दा वचन नहीं सुनिया, इना साहिब गुरु नानक पातशाह दा वचन नहीं सुनिया, जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए। मेरे साहब जी कहिंदे ने उन्हां दी हालत इस तरह दी हो जांदी जे कोई कोड़े तरसदे ने, जिन्हां नूं कुष्ठ रोग लग गया है, जिन्हां दे लक विच कैंसर दे फोड़े हो गए ने, जिन्हां नूं कीड़े पै गए ने, किस तरह ते रात दिन हाए हाए करदे ने। हर हालत भावे वह सुंदर कपड़िया बैठा है, भावे 500 गज के मकान में बैठा है, भावे वड्डिया गड्डा बैठा है, जेड़ा परमेश्वर नूं भुल गया उहदे मूहों वाहेगुरु नहीं निकलता, उहदे मूहों हाए हाए निकलता है। क्योंकि पापी कर्म कमाम दे कर दे, इत्थे दे कि तुहाडे रवाज जिहा ही बनिया। आखो सतनाम श्री की बनिया, जिन्हों मिलदे हो की कहिंदे हो, कमाल दी गल आ। हाए उदों मूहों निकलदी आ जदों बड़ी तंगी होवे, पीड़ होवे। ते मेरी जा चेतना सारे अमरीका वाले नूं पीड़ी होई जांदी, एक दूसरे नूं आ थोड़े दिन होए उत्थे किसे झील दे उत्ते सैर करन दे नाल गुरमुख प्यारे सी बच्चे, ते उहने अगवा कहा हाए, ते मेरे नाल दा वी कहिंदा हाए, ते मैं कहा गुरमुखा तूं ना किहनूं हाए, ते कहिंदा मैं की कहिंदा। मैं कहा जदों उह कहिंदी सी अगों च बच्ची तुरी आउंदी अंग्रेज, उहने जदों आख्या हाए, ते मैं कहा तूं अगों कहिंदा वाहेगुरु, उहदे कन्नी पै जांदा ना, गुरु नानक जिन सुणिया पेख्या से फिर पै जांदा ना, ते कन्न च वाहेगुरु गुरु परमेश्वर दा नाम। जे उहने आख्या सी हाए ते तूं क्यों आए, आख्या तूं अगों

ना मन तेरा है ते ना तन तेरा, तेरा तो कुछ भी नहीं। ते फिर मेरे साहब जी कृपा करके दसो, जे तन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं, तो मेरा है कि? ते मेरे सतगुरु कहन लगे, आ जिहड़ा मैं मेरी मेरी करदा एहो ही तेरी हूं, जे देनी हूं ते ए दे दे। ते मेरा हाथ जुड़ के साहबा ये ते कई जन्म हो गए ने, जे मैं कट सकदा हुंदा इस कोड नूं ते महाराज मैं कट देता, ए कोड मेरे कोलों नहीं निकलदा, जे हुण इन्नी सोझी पाती हूं ते कर दे कृपा, हुण आप कृपा कर। ते फिर मेरे सतगुरु ने सिर ते रखिया हाथ ते पांच वार अखवाया।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे हो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

आधारो आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, सच्चा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा। फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

नाम साचा नाम मेरा आधार, सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जिहड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है, जिहड़े नाम जपदे ने ना उहनां नूं मेरे साहिब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेडे नाम जपदे ने उहनां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु पात बचावे, उहनां ते शतर अनेक चलावत कहावत तन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर, कर मने हथ, उहनां नूं अपना हथ दे के बचा लैंदा, राखत है अपनो कर दे कर, पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे, अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे, उर्द मुख महा गुबारे, पुट्ठा मूंह थले नूं लत्तां तां नूं, ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रहा सी विचारा, मगर उथे ए जप रहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जदों जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री, जिथे अग्न पखे पड़हारे उर्द मुख महा गुबारे, ते ध्यान देना है उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नूं याद करदा सी, उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु दी याद विच जुड़िया सी, ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया, इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया, बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम, उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया, खसम दे वाहेगुरु ने, ते जदों इथों छडा के बाहर ले आंदा इतना

सच जुड़ के आखो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगुच सच साहिब मेरा सच साहिब मेरा सच साहिब मेरा नानक बोले

0: साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनता दे जोग जे जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो। भाई गुरुदास जी का एक पावन वचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
0: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है।
0: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख परसन आया,
1: धन धन गुरसिख परसन आया, धन गुरसिख परसन आया,
0: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख परसन आया,
1: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सर्वत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पहनान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जिन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश होके आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणज।

रात मुकदी सब मुकदी चली रैण सब मुकदी चली रैण सब मुकदी सतगुरु नूं पुछो ए गरीब नवाज ए दुनिया दे स्टोर विच असीं की खरीदण आए हां असीं की लैण आए हां साडे आउण दा इत्थे मकसद है की स्टोर लैणा सी केवल साडे जीवन दा इन्ना ही मनोरथ सी कि असीं इसे आण के अमरीका दा वीजा लग जांदा स्टोर लै लैंदे कारोबार खोल लैंदे केवल साडा एहो ही मकसद आ मेरे साहब कहिंदे नहीं उह भोलिया इह ते दुनिया दी किरत रोजगार मेरे मालक ने चलाया है तेरा कोई सौदा हो रहा जेड़ा तू लैण आया है मेरे साहबा मैं ते दुनिया दे खेल तमाशे च भुल गया मैं की लैणा है चेता कराओ ते साहब चेता कराउंदे

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देने नु तैयार है। आंदी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

लोभ लभाया मोरी रुण चुन लाया भैने सावण आया। ते पिछे जाके एक बचन मेरे साहब ने बड़ा सुंदर कीता है, कहिंदे एक दिन फिर ओ सुपने विच आ गया। आखो सतनाम श्री, आया सुपने विच, ध्यान देना एकाग्रता बख्शो, सुपने च आया, सुपने च, सुपने आया, बोलो सुपने। ए बड़े दिनां दी कहिंदी सी मैं दर्शन करने दर्शन करने, ओ सुपने च आया, सुपने च आया, ते कुछ छिन दर्शन ददार दे के कोल बह के चले गया। सुपने आया पी गया, जिन्ना चिर नहीं सी वेख्या उन्ना चिर गल होर सी, सुपने विच झलक विखा के चले गया। हुण रोंदी आ मैं जल भरिया, रोए अखा च जल त्रप त्रप वगी जांदा है, ते कहिंदी आ हुण करां की, सुपने च ते मिलिया चले गया, हुण आए ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोई तेरे कोल, ना कोई सुना भेज सकदियां ना मैं आ सकदियां, क्योंकि पता नहीं तू रहिंदा किथे आ। हुण ते रात दिन किसे वजोग च कहिंदी आ, धन सो देश जहां तू वसिया।

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तखदा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे ते चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जेड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदियां दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन